0: तेरी माँ का साला बहुत दौड़ा है ना, आप भाग के दिखा। हवलदार
1: माता रे हो भाई।

0: मेरे बाप ने मुझसे पहले ही कहा था कि अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो माफी मांग लेना चाहिए।
1: Hey, limon parang, please.